0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Sorry, I found. It's studio time.
4: It's 7 a.m. Bihanako 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: बक्से गरा में भर्ना होने संबंधी सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस को सूचना। विगत 35 वर्षदेखि उच्च शिक्षा को क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान संचालन और व्यवस्थापन करते आईरिक साथ ही योग्य दक्ष एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा अध्यापन भईर सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस में इस शैक्षिक सत्र 2083 का कक्षा 11 में भर्ना भईर हुआ सबला इस सूचना मार्फत जानकारी कराई।
1: भर्ना कार्यक्रम होने मिति
0: भर्ना म्याद यही फिर 17 गति देखि असार 15 गति सम्म कक्षा संचालन 2083 साल असार 16 गति देखि रजिस्ट्रेशन फार्म भर्ने म्याद 2083 साल असोज 20 गति सम्म पढ़ाई होने समूह कंप्यूटर साइंस समूह कानून समूह व्यवस्थापन समूह मानविकी समूह शिक्षा शास्त्र समूह कानून समूह में 30 जना र कंप्यूटर साइंस समूह में 40 जनालाई मात्र भर्ना लिइनेछ। थप जानकारी को लागि संपर्क नंबर 98-55-10-55 98-41-63-53-37 98-42-84-87-75 में संपर्क कर सकूश।
1: उद्धव कुमार शर्मा कैंपस प्रमुख सोलखुम्बू बहुमुखी कैंपस कल्लेरी सोलखुम्बू।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखरिढुंगा को मिलन चुकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटरहरू कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सपेन्स को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842803000

0: पुलिस दमकल एम्बुलेन्स को फोन नम्बर जुनसुक समय में चाहन सकता कण टपार वा सबले देखने ठावर
1: सार्वजनिक हित का उज्यालो को अनुरोध।

0: की
1: स्पॉन्सर्ड बाई बर्सा इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्विस सेंटर सोनू दूध कुंड नगर पालिका पास सोलरी सोलखुबो
0: लक्की

नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-85-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलिफोन 0825-2043 नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87 नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै यूआई सम मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाडी मर्मत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाडी मर्मत गरिन्छ सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46 नमूना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गारमा जोरबौद सुलुखुम्बु

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखलढुंगा को मिलन चोकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ भरपर्दो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: उखलढुंगा र खोटाङको दिक्तेल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बुकिंग गरी भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: उखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई उखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888002222 र 9842803000।

0: और प्रिंट रुजू करते रकम तवारी साधन को नंबर एक गणेश सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउन पर्ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेन का संबंधित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोक्सर कर अगि सवारी कर तथा दस्तूर एकिन करना तथा कर बुझाए पी प्राप्त होने बिना आपू बुझाई कर को रकम आपको सवारी नंबर एकिन करना होना इस सूचना मार्फत अनुरोध कर
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय फिराक्त गये।
2: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौ सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ
3: मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौ मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौ जीवन रक्षा गरौ।
2: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
3: बाल बालिकालाई लागू औषध दुरूपयोगबाट बचाऊ
0: लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले प्रयोग नगरौ बाल बालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौ बाल बालिकाको संगतमा ध्यान दिऊ लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिऊ बाल बालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौ बाल बालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौ विद्यालयमा जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौ बाल बालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौ।
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. It's studio time.
2: It's 4 p.m. अपराह्नको को 4 बजे.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुंभ

0: Raio Rádio, Sono FM com Tarantã.
1: Sono FM, 101.2 MHz. Ujjwal Bhavishyako Lagi, Hamro Abhiyan.
2: Time check. Sono FM, Studio Time.
3: It's 5 p.m. 7:05 बजे.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Studio FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start को start बजे.
5: Time check को साथ ना. New Star Digital Color Lab तथा द्वारा माय offset press. सोलु दुतुन नगर पालिका पांच सोलु कुंबू.

0: उल्लू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य फैन स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू

0: Ai, o rádio no sono é tempo.
1: Sonu FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Sonu FM in studio time.
3: 10 p.m. raat ko 10 baje.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू तुतुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंभू